0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future. Future.

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-677.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मोत्रिस दी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम, मैं मोत्रिस दी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुक कीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं मोत्रिस दी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मैं मोत्रिस दी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, मैं मोत्रिस दी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677
12: on 1413 AM.
13: Anokhi waza hai, sare zamane se nirale hain. Ye aashiq kaun si basti ke yarab rehne wale hain?

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: कॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायेदारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं।
1: नंबर वन एशियन कम्युनिटी रेडियो ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 14:13 AM DAB+ मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk दिस is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
10: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
10: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
10: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
8: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर। रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
2: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
3: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
2: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
3: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
2: फर्स्ट चॉइस
3: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
3: 01274317644।
4: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
5: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
5: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
3: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
3: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
5: बालियां, अंगूठियां और हार,
3: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
3: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
3: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
3: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
5: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
3: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
5: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
3: 33 Wetley Lane, Bradford, 01274201679।
5: safewayrider.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: दुनिया में मुझे तुमने
1: बेगम शाह साहब रहमतुल्लाह ने नया ख्याल पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि जी चाहता है तोहफे में भेजूंगा उन्हें आ

संगे दरे जाना पर करता हूं जिदी साई। मुफ्ती आजम हिंद ने इसी रदीफ व काफिया को इसी काफिये को इस्तेमाल किया। कहते हैं मुफ्ती आजम हिंद अलमनूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء

0: offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
2: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
2: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
2: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
2: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
2: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
5: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
10: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
10: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी इस कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
12: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
12: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
12: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
13: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं नोटरीज दी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, मैं नोटरीज दी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं नोटरीज दी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मैं नोटरीज दी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, मैं नोटरीज दी।
2: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
14: कांपता है दिल तेरा अंदेशाए तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, किश्ती भी तू, साहिल भी तू, देख आकर कूचाए चाके गिरेबां में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमिल भी तू।

0: प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
0: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
0: 01274317644।
2: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
3: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
0: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
3: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
0: और खुशबू लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
3: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY।
0: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
0: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
3: बालियां, अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार,
3: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
3: आपकी शान
0: हमारी आन,
3: क्वालिटी की पहचान।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 124 लेन ब्रैडफोर्ड, BD95VR, 01274491442।
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
0: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
0: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
0: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
3: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

غمزہ دو کو رضا مزدہ دیجئے.

0: Sheena.
1: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
11: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
11: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
12: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन।
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं,
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।

0: और भाई का खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
1: मंगला केटरिंग 77 आथिंगटन स्ट्रीट ब्राडफोर्ड BD8 ATY।
0: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई।
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए।
0: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
1: बालियां, अंगूठियां और हार
0: जो दुल्हन करे सिंगार।
1: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान।
1: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड BD95 VR 01274491442।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
2: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइट रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-677. Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर,
7: तो जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज

0: 4242 पाकिस्तान ज्वेलर्स।
1: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
1: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
2: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड 01274201679
1: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवत लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South York?
9: Yes.
10: Look to start driving or build a strong career with Safeway Rider. You can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you first time. Need your taxi for West, North or South York?

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं नोटरीज भी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, मैं नोटरीज भी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं नोटरीज भी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मैं नोटरीज भी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, मैं नोटरीज भी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Hello and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah bakhair and bakhair agle to all my beautiful listeners, my wonderful radio team and my very special audience. How are you all? I hope you have had a fantastic weekend filled with happiness, laughter and precious moments. Yes, filled with precious moments with your families. Alhamdulillah. With Aisha Akhtar, you are in for a lovely, lively, exciting and entertaining program today. We have three exciting segments lined up for you, and I hope you will really enjoy my today's program. Yes, because I have designed my program with English edition, you could say it English edition, English version, and a bit of English language. Yes, the second one is, as usual, as normal, your favorite, not my favorite. I, to be very honest with you, my beautiful listeners, I have to struggle with your favorite language, Punjabi, Desi, Desi, Turka. Yes, last time if you remember, you liked my program, and how could it be possible, and how can I forget those memorable moments that my wonderful audience like my program? And obviously I am not in the mood to repeat those special beautiful songs, but new edition and new beautiful things. You will really enjoy beautiful things and songs. You will really, really enjoy today's program. So, stay with us, stay with me. Hopefully, you will find my today's program a very wonderful program ever today, inshallah. The third one is Urdu. Urdu is our language, especially Aisha's language. Whenever I feel difficulty, I jump into my own language, Urdu. That gives me so peace of mind, relaxation. I feel so confident when I speak in Urdu, especially. Yes, I will let you know, I will tell you what's the secret. But be patient. Yes. But therefore, before we get started, I would love to hear from you, as normal, as usual, your feedback. Let me know, which segment did you like the most? Yes? So, topic hai ji, aaj humare paas bahut hi beautiful topic hai. आपको पता है आयशा अख्तर हमेशा सरप्राइज रखती है भाई, क्योंकि प्रेफरेशन रेडियो 14:13 AM पर कैसे हो सकता है कि आयशा अख्तर अपने लिसनर्स को इधर उधर जरा भी हिलने दे, वो ही नहीं सकता भाई. आपके प्रोग्राम आपके लिए पेश की जा रही, आपकी फीडबैक, आपका मुझे हौसला देना, आपका साथ जो है वही मेरे प्रोग्राम्स की जान है. बिल्कुल हमेशा की तरह आयशा अख्तर आज वो देसी तड़का लगाएगी, और एंड पे एक सीक्रेट है जी आपके लिए, ब्यूटीफुल सीक्रेट. आप कहेंगे वाओ, इट्स माय टॉप सीक्रेट, एंड इंशाल्लाह आई विल डिलीवर दैट यू नो सीक्रेट, अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माय प्रोग्राम. बट इन द लास्ट, inshallah, you will find wow amazing. So Don't go anywhere. Just stay with me. Stay with Aisha, okay? So, yes, Bradford Asian Radio, 14:13 AM. And our website, bradfordasianradio.co.uk. हमेशा की तरह हमारा स्टूडियो टेलीफोन नंबर जो कि अब तो मेरा ख्याल है कि बच्चे को बाय हार्ट है, याद है, बाय हार्ट याद है, इसको जरूरत ही नहीं देखने की, बस इसको अपने दिमाग में, जहन में नक्श कर लें। जी बिल्कुल, नंबर है जी 01274306677। जुड़े रहे खूबसूरत लम्हात के साथ। ऑनेस्टली बिलीव मी, ट्रस्ट मी, यू विल रिग्रेट इफ यू मिस वन ऑफ माई पार्ट टूडेज, स्पेशली टूडेज प्रोग्राम, यू विल रिग्रेट वाओ व्हाई डिड यू। एंड जब आप दूसरों से सुनेंगे फीडबैक, कहेंगे वंडरफुल, आज का प्रोग्राम तो इतना इंफॉर्मेटिव है, इतना डिलिशियस एंड टेस्टी है, तो आप खाना तो है नहीं कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे वो भी देसी तड़का जो होगा ना, उंगलियां नहीं चाटेंगे, बल्कि आप कहेंगे कि आज तो हमारे दिन भर की थकान जो है वो दिन भर का काम करने से पहले ही उतर गई। ऑनेस्टली बिलीव मी, ओके, यही मकसद होता है हमेशा की तरह मेरे प्रोग्राम का, स्पेशली के जिंदगी में ब्यूटीफुल मोमेंट्स हमें मिले हैं, कीमती हैं, वेरी प्रेशियस, इतने अनमोल हैं, इनकी कदर कर लें। जाने वो कहते हैं जिंदगी में ये लम्हात कब मुयस्सर हो। सीरियस नहीं होना आयशा अख्तर, सीरियस बिल्कुल भी नहीं होना, नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत एक हैप्पीनेस, जॉयफुल जो है वो जिस कहते हैं ना मोमेंट है, और इन मोमेंट्स को मैं आपकी नजर करना चाहती हूं, आपके लिए है डिजाइंड ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स। जी बिल्कुल, हमारा दूसरा नंबर 07800599563 है जी। और दूर क्यों जाते हैं आयशा अख्तर की तरह एक मोबाइल, मैं क्या, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स मेरे लिसनर्स हैं, एक मोबाइल स्मार्ट से मैं अपना हमारा वाओ अ वेरी फेमस रेडियो परफोरेशन रेडियो को डाउनलोड कर ले, और बहाना नहीं चलेगा, एक्सक्यूज नहीं चलेगी, ओ मैं तो फला काम में बिजी थी, मैं इधर थी, मैं उधर थी, या हम इधर थे, या थे कसी गाल गाले, क्या ख्याल है? नहीं भाई, हिलने नहीं देना, अपने स्मार्टफोन को अपने साथ साथ रखें। आपका यकीन करें ये प्रोग्राम, टुडेज प्रोग्राम सुनते हुए घर के आप सफाई झेल लें। आयशा अख्तर जो है ना, इसको बड़ा अपने आप को पुश करना पड़ता है, उठ जा घर के काम पड़े हैं, अपने आप को खुद ही कहना, समझाना पड़ता है। ब्रॉडकास्ट एशियन रेडियो 14:13 AM पर अब आयशा अख्तर अगर शुरू हो गई ना, तो फिर ना पूछिए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर जोश आता है, ऐसी भी कोई बात नहीं। घर का हर कोना खुदरा जो है नीट एंड क्लीन, पीस ऑफ माइंड, बच्चे खुश, और बच्चों को अब इतनी आदत पड़ गई जरा कहीं मैस नजर आता है, बस घर तो एटलीस्ट हमें साफ सुथरा मिलना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा जी, अब लेकिन मैं अल्लाह पाक की बहुत शुक्रगुजार हूं, इतनी शुक्रगुजार कि आप लोगों को तसव्वुर भी नहीं होगा। एक बेमाया, एक बेजर्रा, हकीकत कुछ नहीं, हकीकत तो रब की है ना। किसी भी मूड में हो, किसी भी लम्हा में हो, कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कॉर्नर में, किसी भी लोगों के साथ, कहीं भी, सांसों की डोरी तो उसी ने थाम रखी है ना। खुश रखना है सबको, इंशाल्लाह सबको खुश रखना है। मुश्किल बहुत है लेकिन नामुमकिन नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यस, बढ़ते रहेंगे, हमारी बातें खूबसूरत सी चलती रहेंगे माय ब्यूटीफुल लिसनर, और ये समझें कि ये फैन जो है इंटरनेशनल लेवल पे, उसने मेरे प्रोग्राम को सराहा, उसको पसंद आए, पता नहीं कितनी गिफ्टिंग होती है आयशा अख्तर को, और ये अल्लाह का, अल्लाह करीम का मेरे ऊपर इतना इनाम, इतना करम, इतना फजल, इतनी उसकी रहमत कि जितनी उसकी शान है, मैं तो
1: कुछ भी नहीं, ये मेरे रब्बे करीम की शान है कि कहां कहां से वो रोजगार के वो इतने इतने जराए पैदा कर देता है, अकल दंग रह जाती है, दंग बस शुक्रगुजार बंदे बनना। और कभी भी किसी को हकीर नहीं जानना, और भावे मिलन सोने हजारा असी नहीं यार वटाना, यार एक ही आ, हा बस करके देखो। उरूज पे कैसे जाना है, तरक्कियों की तरफ, ये है टॉप सीक्रेट्स। इंशाल्लाह चलता रहेगा प्रोग्राम, जाना कहीं नहीं कि एक लम्हा मिस हो जाए। बहुत खूबसूरत, यू विल रियली एंजॉय टुडेज प्रोग्राम, आई प्रॉमिस यू, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे एक ऐसे मोहसिन कह लें, एक अजीज जो फैन है, उसने स्पेशली डेडिकेट किया है मुझे ये सॉन्ग। कैसे हो सकता है कि आयशा अख्तर अपने तमाम लिसनर्स को जहां कहीं दुनिया के किसी कोने से उसने मेरे लिए ये इतना खूबसूरत सॉन्ग जो है मुझे डेडिकेट किया है। और आयशा अख्तर आपको ना डेडिकेट करे, ये सॉन्ग मैं आपको डेडिकेट करती हूं, क्योंकि आप हैं हमारी ऑडियंस है जो प्रोग्राम सुनते हैं, सराहते हैं, हमें किसी मंजिल तक पहुंचाते हैं। और आयशा अख्तर तो आपकी बहुत ममनून है कि जो इतनी इज्जत दे देते हैं, आप सब काबिले इज्जत है मेरे लिए। और जिसने ये सॉन्ग मुझे डेडिकेट किया है वो बहुत मैं सलूट करती हूं, उनकी भी दाद देती हूं, उनकी जहानत को और उनके किसी को भी एजाज से नवाजने के लिए, कि ये भी अल्लाह ताला के बंदे बंदियां हैं जो आपको इतना अच्छा समझते हैं कि फिर रब की तरफ नजरें उठती हैं, मौला कर दे इस काबिल कि आयशा अख्तर सबके लिए कुछ नहीं तो दुआ तो खैर कर सके, दुआए खैर, दुआए खैर। बहुत बातें हैं माशाल्लाह आपसे होती रहेंगी, कहीं नहीं जाना। ये गाना जो मेरे किसी फैन ने मुझे डेडिकेट किया है, मैं आप सबको, क्योंकि आप सब मेरे, और इंक्लूडिंग दैट फैन, अल्लाह करे कि वो इंटरनेशनल लेवल पे ये मुझे भेजा गया है तो वो मैं वो भी सुन रहे हो, सारी फैमिली उनकी, मैं बहुत आपकी कदर करती हूँ सर, जिन्होंने मुझे पूरी फैमिली ने डेडिकेट किया। आप सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए प्रेशियस, काबिले एहतराम हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने ये मेरे मुझे ब्यूटीफुल सॉन्ग जो है डेडिकेट किया। और आप सबकी नजर करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। चले भी इंशाल्लाह तो कहना ही होता है ना, क्योंकि इतना बुरा नहीं है, अच्छा है। फिर क्या हुआ, ये खूबसूरत जो अल्फाज है कह देने चाहिए, अच्छे लगते हैं, चले अच्छे हैं तो अच्छे लगते हैं जी। बात बढ़ती चली जाएगी, आइए खूबसूरत सा सॉन्ग आयशा अख्तर आपको माय ब्यूटीफुल लिसनर्स को डेडिकेट करती है जी। बिल्कुल।

0: One Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: सेफ पे राइडर.co.uk।

0: नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
3: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
4: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
3: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

जी बिल्कुल बिल्कुल मौजूद सामिन इकराम, बहुत ही साडे लई काबिले एहतराम। और मैं हूं पंजाबी दे आना।

जी सज्जनों ते मित्रों ते बेलियो, तुम अच्छी तरह पता बल्कि चंगी तरह पता कि ब्रेफरेशन रेडियो 14:13 AM पर हुन आशा अख्तर बैठी हुई है। आ जाओ ते बह जाओ ते बल्ले बल्ले हुन गीत भी सुनो, संगीत भी सुनो ते मिठिया मिठिया चलिया चलिया गल्ला भी सुनो ते मैं गन्नी फायदेमंद गल्ला हुन होने वालियां मैं हुन शुरू कर दितियां। भई मैं अपनियां आईयां ते नहीं आई, मैं जिहड़ियां साडे इर्द गिर्द लगी हुईयां गल्लां उही करूंगी और उही करेसां गल्लां ना होर किहड़ियां करनियां ताकि असीं भी जमाने दे विच जीना सिख लईए। इह बड़ा ही औखा हो गया जी हुन जीना। असी ब्रॉडफॉरेशन रेडियो.co.uk साड़ी जी वैबसाइट की पहचान है जी। तो साढ़े स्टूडियो का टेलीफोन नंबर की जी 0127 3067। चलो मैं हूँ अभी मैं इसको उर्दू में बताती हूँ आप लोगों को। स्टूडियो टेलीफोन नंबर है जी हमारा 01274-3066-77। ये उर्दू में सेगमेंट में ना आपको मैंने पहले बताया उर्दू हमारी लश्करी जबान है जिसमें बड़े सारे जो भी जितने अल्फाज आते हैं हमने भी छोड़ना नहीं, स्लोली स्लोली प्रोग्राम तुहानू ही सुनावांगे ताकि तुहानू पता लगे कि साडी उर्दू जबान दे विच कितनी वैरायटी आ। असी जी वैरायटी लेके आवांगे वन सवन्ने नित नए डिजाइन किते आयशा अख्तर दे अपने प्रोग्राम ओ भी तुहाडे कोलों पुछ पुछ के। अपनी मैं चॉइस दा तां कुछ इन्ना रखदी नहीं, ए सारी जितनी भी हुंदी है मेरे कोल कलेक्शन ए चॉइस हुंदी है जी तुहाडियां गल्लां दी ते असी एही गल्लां बातां भी लेके अगे बढ़दे हां। जाना किथे नहीं, इत्थे ही रहना, 2 मिनट वेट करो।

0: बिल्कुल सज्जनो ते मित्रो ते बेलियो ते साडे बहुत ही रिस्पेक्टेबल साडे लिसनर जी सुनने वाले हो जिधर जिधर भी तुसी सुन रहे सब दियां खैरां ते रब रखा साडा ते जी बिल्कुल अच्छी गल है जी ए बार बार दुआ देना ते दुआ लेना ऐ साडी बहुत चंगी अगर आदत बन जाए ते की पता केड़ा कबूलियत दा टाइम है ते जी असी बैठे अल्लाह दी याद दे विच वी रहिए देखो तुसी ए गल हैगी ए है कि दुआ जिहड़ा देना हुंदा ना इहदे नाल दा कोई मुल ही नहीं इहदे नाल दा दुआ जिहड़ा साडा बहुत कीमती ओह कहिंदे जी कुड़िए जींदी वसदी रह कुड़िए सदा हमेशा हसदी खेडदी रह ते कुड़ियां दे नाल नाल सारे मुंडे जी समझ गए होने जी तुसी सारे ही जिथे जिथे भी साडे सुनने वाले हो खुश रहो ते आबाद रहो ते शाद रहो ते जी साडा ब्रेडवरेशन रेडियो 1430 AM दा जिहड़ा रेडियो अजी इहनू भुलना तुसी बिल्कुल नहीं ऑनलाइन भी आए दी सारी एंटरटेनमेंट तुसी ओथे चले जाओ तुसी साडी वैबसाइट दे उत्ते चले जाओ ब्रेडवरेशनरेडियो.co.uk ते कदी तुसी भी मायूस नहीं होंगे रंग बिरंगे प्रोग्राम सुनदे सुनदे तुहाडियां कड़ियां जिहड़ियां बड़ियां ही चंगियां गुजरन लगियां ते होर की जी साडे स्टूडियो दा टेलीफोन नंबर भी पुछ लो तुसी ते ओ भी असी तुहानू दस दिंदे आ 01274306777 आ जी तुसी किधरे नहीं जाना ते दूसरा नंबर साडे कोल आ जी 07800599563 आ जी और जेड़ा मर्जी नंबर जेड़ा मर्जी लंबर ते नहीं नंबर मिला लो ते जी साडे नाल राबता कायम कर लो ते जे वधिया वधिया मैं कहनी वैगनी जी वधिया वधिया कहते जी बिलकुल वधिया वधिया ते जी वधिया वधिया प्रोग्राम है ते जी साडे नाल जुड़े रहो ए देखो जी मैं कहनी जिहड़ा हुण अगला संगीत है ना भेजा भेजा ते बल्ले बल्ले चलो फिर ए हुण हुण गल्लां नहीं बहुतियां मारनियां मैं ते हुण मैं तुहानू एंटरटेनमेंट ताकि तुहानू किसे किस्म दी थकान ना होवे तबीयतां भी बड़ियां नाजुक हुंदियां वा जी कम जदों करिए इन्ने बड़े कम नजर आउंदे ना उत्थे तुसी एदां दे सोहणे सोहणे जदों गीत सुनोगे ओ छड्डो जी ओ कम करदे रहो जिन्ने भी औखे कम होणगे ना वादा करदी आशा अख्तर ओदी तुसी थकान ही भुल जाओगे थकावट ही भुल के ना आ वधिया जिहा जदों तुसी गाना सुनिया चलो फिर हुण सुनो फिर देर किस गल दी
1: hey boy, really, tonight we gonna rock this time.

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज पल्स, सी रूम 46 रूली एवेन्यू। आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत हॉल में लाइव पियानो से लुत्फ।

बिल्कुल मजे सुन इकराम ब्रफरेशन रेडियो 1413 AM का खूबसूरत सा ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है बाय आयशा अख्तर जी। बिल्कुल हमारी वेबसाइट ब्रफरेशन रेडियो .co.uk है जी और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274306677। गल हो रही सी तुहाडे नाल एक बहुत ही चंगी जई ते वधिया जई ते जेड़ी सानू दर्स वी दिंदी आ जिंदगी दे मामलात निपटाने लई ते जिंदगी दी दौड़ दे विच हारने के हारना नहीं और हिम्मत जमा रखनी और जेड़ा भी काम करना बड़ा सोच समझ के करना। मैं पहले भी आख्या के असी किसी की नकल थोड़ी करनी असी रीस नहीं करनी जो सानू रब ने अंदर साढ़े सलाहियत रखिया उन्हों असी तलाश करना उन्होंने असी पॉजिटिव वे दे उत्ते रखते हुए फिर अपना सफर जेड़ा जिंदगी दा जारी उसारी करना। दिल में कितनी खुशी होंगी दिमाग में कितना सुकून मिलता करके वेखियो जरा करते भी होने तुम कर रहे हैं लेकिन एक मैं वैसे गल कर रही जड़िया गल् ना बड़े मिठे मिठे विचार दे नाल ते जड़े साढ़े पंजाबी दे जड़े गीत होंगे ना संगीत यह भी मैं जड़े पेश कर रही हाँ तो उन्होंने जड़े टकोरा मिठिया मिठिया लाते हैं ना और कभी सासू फड़ के कुटना तो कभी देर तो जेठ दियाँ यह सारिया गल् जो ना ए बोलों के गीतों के दस देंगे तो प्रैक्टिकली इन्हों का नाल कोई तलक नहीं हों है यह गीतों का असी मजा असी गीतों का इन्होंने गीतों का गुस्सा थोड़ी करना वा ओवरऑल एक मजाक पैदा करने लिए एक हसाने लिए एक जो इंजॉयमेंट एक रिफ्रैशमेंट एक एंटरटेनमेंट होंगी आ जिन्हों तू असी सुन के तो बड़ा जी खुश जहा हो जाता चा ही पूरा करना हों होर केड़ा कोई असी उन्होंने कोई गुस्सा थोड़ी करना हों इदा ही जिंदगी दे विच साड़ियां चाहतां दे सारे मुताबक कम नहीं होंदे जिंदगी दे विच साड़े तबीयत दे खिलाफ कम बड़े ही जा रहे होंदे उत्थे असी बड़ा ख्याल रखना साड़े सबर दा पैमाना ना छलक जाए साड़े असी अपनी मुताबक नहीं जिंदगी चला सकते जी सकते हैं जीना पैंदा ये राहत आ बड़िया ही गूढ़िया गल् आयशा अख्तर ने बड़े सियानपन के नाल मुआशरे का अपनी सुसायटी का एक जो फेरा टोरा किया तो वेख्या दिल भी खिच पई दिमाग भी हिल गया पर लैसन बहुत वड्डा हुंदा बहुत वड्डा लैसन हुंदा वा जीने के तरीके आ जाते हैं असी इदा ही उही कहिंदे ना कि मैं तो लैके लह तक जिहड़ा वा वह बंदा सीखता रहिंदा उहदे पल्ले कुछ ना कुछ पैंदा रहिंदा अगर असी पल्ले पाउणा चाहुंदे आ अगर असी बेसबरे हो जाइए अपनी आई दे उत्ते आ जाइए यह तुहाडी अपनी आई जिहड़ी तुहानूं लै डुबदी आ ओवरऑल मैं गल कर रही अपने समेत बड़ी एहतियात बड़ी संभालता जिहनूं कहिंदे आ ना एहतियात दे नाल चलना पैंदा तिलक ना जाइए किधरे तिलकन रास्ता हुंदा स्लिपरी वे जिहनूं कहिंदे आ पर जदों फिर असी उन्हां रास्तियां तों बड़ी असी ना चंगे तरीके नाल गुजर जांदे आ ना फिर जदों साफ सुथरा एक सानूं रास्ता मिलदा ना ਉਹ ਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣੇ ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੈਡਫੋਡੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ 1413 AM ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਯਸ਼ਾ ਅਖ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰਫਰੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ .co.uk ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 01274306677 ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 07800599563 ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡਰੋਇਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਸ਼ਰੀਆਤ
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ।

जी वाह वाह जी वाह। मैं क्या जी, थकान उतर गई ते गन्ना दा गुबार उतर गया ते आशा उतर गई ते बैठी। ऐ संगीत तो बहुत ज्यादा महसूस हुई ते अगे भी साढ़े कोल बहुत ही वधिया ते चंगा जिहा एक गीत हैगा लवी। हुन एनिया हाले गल्लां करने दी एक ते हिम्मत भी नहीं ते दूजा मैं पहले भी बड़ा ही अपने मन नूं संभाल के ते तुहानूं मैं एह की करा, मैं की करा। हा हा हा, चलो मूड हुन बहाल बहाल ते चंगा चंगा रखदे हां। चलो जी हुन वधिया वधिया ते ईजी ईजी वर्जन वल चलदे हां, क्योंकि कली मैनूं दस रही आ कि आशा बस हुन थोड़ा जिहा नतीजे की तरफ आना, पूरे प्रोग्राम का निचोड़ ते अक्स कढ के रख देना। लेकिन उस तो पहले असी एक छोटे जिहे असी जावांगे गीत दे उपर, संगीत सोना जिहा सुन के ते फिर असी है ना जरा ओ भी फिर मैं रखिया हूँ इस वेले पंजाबी दा गीत। इस तो पहले कि असी पंजाबी दा सोना जिहा गीत सुनीए ते असी बोल रहे हैं जी ब्रैफरेशन रेडियो 1413 AM दे उपरों। आशा अख्तर तुहाड़े लई अज कमाल दीआं गल्लां हुण अखीर दे उत्ते करनियां ताकि असी प्रोग्राम दा निचोड़ कढ के ते इहनू ऐसा वधिया प्रोग्राम असी बना दईए कि तुसी कहो वाह जी वाह, बल्ले बल्ले ब्रैफरेशन रेडियो 1413 AM जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ फिर कह दीजिए पाकिस्तान पाइंदाबाद जी। हाँ जी जी, साडा इस वेले जिहड़ा वैबसाइट साडी आ जी ओ हैगी आ जी ब्रैफरेशन रेडियो .co.uk जी। तो साडा स्टूडियो दा टेलीफोन नंबर 01274306 3066777 जी। हुण इधर उधर ना जाइयो, चौंदा चौंदा एक गीत आ रहा जी थोड़ा।

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
9: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679।
9: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिगो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर बाला,
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेड 4955555। हफ्ते के सातों की खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर।

treat all colleagues with the same level of fairness and respect. We should never keep our colleagues or team members in the dark, hide important information from some people, or give preferential treatment to our favorites. Everyone deserves to be treated equally, and we should always communicate openly and clearly with everyone. If senior colleagues mislead or deceive their juniors, how can they expect those juniors to trust them or give them the respect they deserve? Is it possible? The ball is in your court, my beautiful listeners. Yes, my respectable and my beautiful listeners, the ball is in your court now. Okay. Then respect must be earned through honesty, fairness, transparency, and mutual understanding. Is it clear to everyone? I hope it is. Thank you very much. Jazakallah khair. Bless you all. जी हमारे साथ जुड़े रहे एंड पे बहुत ही खूबसूरत सा एक कंक्लूजन निकालना है घड़ी की तरफ मेरी है नजर कोई बात नहीं हम ख्याल रखेंगे अपनी ब्रेक का रिस्पेक्टेबल ब्रेक होती है हमारे लिए क्योंकि हमारे रिस्पेक्टेबल जितने भी स्पॉन्सर्स होते हैं हम उनकी दिल की गहराइयों से उनकी इज्जत उनकी कदर करते हैं जिन्होंने हमें माशाल्लाह हमारे ऊपर ट्रस्ट किया और हमें इतनी खूबसूरत उनके बिजनेसेस जो है उनको एनहेंस करने का मौका दिया जी बिल्कुल मज़सामीन इकराम जी चलते हैं खूबसूरत सा चंगा या गीत तो सुन लीए आयशा अख्तर की खुद बड़ी जड़ी हुंदी ना फिर फड़ लेती फिर मैं भी बोल बोल के हूँ मैं कहती थोड़ी जी मेरी भी थकान उतरे तो फिर मैं अगे चंगिया चंगिया गल्ला करा एंड उपर सोना जिहा वधिया जिहा गीत मैनू पता तुहानू बहुत चंगा लगेगा चलिए हुण सुनदे आं फिर

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं नोटरीज भी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम, मैं नोटरीज भी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान। मैं नोटरीज भी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, मैं नोटरीज भी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, मैं नोटरीज भी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

ये ब्रेकफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर। यॉर्कशायर की इस हसीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारी वह बाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, हमने दिल की गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर खुशामदीद कहेंगे।

और दोस्तों ये तोहफा था अपने उन तमाम सामीन नाज़रीन के लिए और नादीदा लिसनर्स के लिए कि जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाती है। अब वक्त हुआ है उन मेहमानान गिरामी का तारुफ कराने का जो हमारे हमराह मौजूद हैं तशरीफ लाकर हमारी इज्जत व तौकीर बढ़ाने के लिए हमारी आमद के साथ ही तशरीफ ले आते हैं, उनका जिक्र खैर होगा। फिर आज मेरे कंधों पे एक बोझ और भी है और वो है हमारे मोहतरम लिसनर भगत सिंह साहब। कल प्रोग्राम ख़त्म होने से 3 या 4 मिनट पहले तशरीफ लाए थे, हालांकि उनका कहना ये था कि मैं बहुत पच के पहुँचा, लेकिन वक्त इन्हें इजाज़त न दी और हम उनकी पसंद का गीत हमने नोट तो कर लिया था, पेश नहीं कर पाए थे, तो वो उधार भी हमें निमटाना है। साथ ही साथ हम खुशामदीद कहना चाहेंगे सर फहरिस्त हमारे यहाँ के मकामी सुनने वालों में और गिरदो नवाह से जनाब वक़ार साहब हैं। वक़ार साहब अहल खाना के हमराह मौजूद हैं और आज साउथ वेल्स जाने की तैयारी कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरा तोहफा मैं घर से ही वसूल करके जाता हूँ तो दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरता है। आपकी आवाज़ सुनकर मैं अपने दिन का आगाज़, ही मोहब्बत है यार, ये चाहत है, ये प्यार है, इसे अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए। हमारी ढेरों दुआएं वक़ार तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा मोहब्बत भरा सलाम हम अपने तमाम सुनने वालों की खिदमत में पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम खुशामदीद कहना चाहेंगे रियासत साहब को, हर्डिसफील की हसीन फजाओं से हमारे हमराह मौजूद हैं और मोहब्बत भरा सलाम पेश कर रहे हैं। तशरीफ लाए हैं रियाज साहब ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से, सुमेरा ब्रैडफोर्ड 3 से हमारे हमराह मौजूद हैं, डॉक्टर माहरुख साहब ब्रैडफोर्ड की ससीन वादी से, और इन तमाम अहबाब ने आप तमाम सामीन और नाजरीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश किया है। तशरीफ लाए हैं लैया पंजाब पाकिस्तान से नज़ीर अहमद साहब। कल मैं प्रोग्राम के अख्तिताम पर मैंने आपका जिक्र किया था कि आपकी हमारे प्रोग्राम में आज न शरीक होने की वजह से तशनगी रही, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो तशनगी नहीं रहेगी क्योंकि नज़ीर अहमद साहब लैया पंजाब पाकिस्तान से हमारे बज़्म में तशरीफ ला चुके हैं। हमेशा की तरह मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामईन और नाज़रीन की खिदमत में और कहते हैं सदा सलामत रहें, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ये एक मखसूस आपका वो है जो हमेशा हमें मिलता है, हम भी हमेशा आपको दुआओं से नवाजते हैं कि अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, सेहत से रखे, अपने हिज़्ज़ो अमान में रखे। और देखते हैं कौन आया है अभी, क्योंकि लिखा हुआ आ रहा है जी हाँ आ गए, अब आवाज सही आएगी, वो मेरी गलती थी। अब बताइए आवाज सही आ रही है, मुझे लिख के बताइए आवाज सही आ रही है, अब मैं कुछ भूल गया था, अब आएगी आवाज आपको सही। जी मैं जिक्र कर रहा हूं परदेसी मजीद साहब का, तशरीफ लाए हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका, सबको मेरा सलाम और ढेरों दुआएं शकील साहब और रिजवान साहब को, चौधरी रुखसार अहमद साहब को, नवीस साहब को, खालिद साहब को भी मेरा सलाम ढेरों दुआएं, आपके लिए खुसूसी दुआएं। मैं आपका गीत लिख लूंगा और कह रहे हैं कि आवाज सही नहीं आ रही है जी, अब बताइए, वो एक वजह से नहीं आ रही थी, अब उन्होंने वजह दूर कर दी है, बताइए आपको आवाज मेरी सही पहुंच रही है या नहीं, लिख के बताइए। पहले आवाज कट रही होगी, सही कह रहे हो, लेकिन अब सही आनी चाहिए हमारे हिसाब से। बहरहाल ये हिसाब किताब से चलता रहेगा, बातें भी होती रहेंगी, क्योंकि अब तो परदेसी मजीद साहब 3 घंटे के लिए हमारे हमराह मौजूद हैं और आप तशरीफ लाए हैं खाड़िया गुजरात पाकिस्तान से। मैं आपका गीत, अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता कि आवाज आप तक बिल्कुल सही पहुंचनी चाहिए, पहुंचेगी इंशाल्लाह। आप बहुत दूर है ना, सात समंदर पार सफर करते में सर्दी लग रही होगी आवाज को, यह भी मुमकिन होता है। बहरहाल चलते हैं साउथ वेल्स
جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں وقار میاں، آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو میرا محبت بھرا سلام پہنچے۔ کہنے لگے جب آپ مجھے بتا رہے تھے وقار کہ جب آپ یہ کہتے ہیں آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو محبت بھرا سلام پہنچے تو ہمارے گھر میں ایک شور مچتا ہے، بالکل ایسے جیسے فٹ بال کا میچ دیکھتے ہوئے گول ہونے پر بے ساختہ لوگ کہہ اٹھتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں، تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا تحفہ میں لے کر حاضر ہوں۔ ہیو اے نائس اینڈ سیف جرنی، ہماری ڈھیر دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔

0: दूसरा वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद हम आपको लिए चलेंगे उस उधार को उतारने के लिए जो कल से हम पर वाजिब है, जनाबे भगत सिंह साहब का, जिनका मोहब्बत भरा सलाम हमें पहुंच चुका है। कमर्शियल के बाद आपका तोहफा आपकी नजर करेंगे।
1: And online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679।
9: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
4: अदृश्य हस्बे वादा, हम अपने कंधों का बोझ हल्का कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं लीज की खूबसूरत हसीन फदाओं और पहाड़ियों के दरमियान मौजूद हमारे भगत सिंह साहब के तोहफे की जानिब। आपने फोन करके मेरा शुक्रिया अदा किया, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि ये प्रोग्राम आपका है और आप ही की मोहब्बतों, प्यार और चाहत के साए में आगे बढ़ता है। तो मैं कोई एहसान आप पर नहीं कर रहा, बल्कि हाँ, मुझे ये शर्मिंदगी थी कि आपकी आमद, आप बहुत भाग दौड़ के पहुंचे लेकिन तंगी वक्त के बाइस हम आप तक ना पहुंचा सके। लेकिन अब हम आपका तोहफा आपकी नज़र कर रहे हैं भगत सिंह साहब, आपका मोहब्बत भरा सलाम हम पहले ही तमाम सामईन नाज़रीन की खिदमत में पेश कर चुके हैं। आमद का बहुत शुक्रिया।

भी फिल्म हमने जब देखी नूरा भगत सिंह साहब और मुझे सरदार हुसैन साहब की, जब ये पता चला कि हमारे उस इलाके के, अब हमारा इलाका जो कॉलोनी नहीं कहलाता, अब उसे शाह फैसल कॉलोनी कहा जाता है, कि फनकार मौसीकार की, तो इसलिए हम देखने गए थे। और फिर जब ये गीत सुना हमने जिसे हजी कादरी ने लिखा था, और नूरजहां, इकबाल बानो और क्या नाम था उनका, मुनीर हुसैन की आवाज थी इस गीत में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। किस कदर सादगी है, मोहब्बत है और दिल में उतर जाने वाली मौसीकी है। अल्लाह ताला सरदार साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए। हजी कादरी भी अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं, मलका तरन नूरजहां भी मौजूद नहीं, मुनीर हुसैन भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं, इकबाल बानो भी हमारे दरमियान मौजूद नहीं। अल्लाह ताला इन सब के दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मगफरत फरमाए। सादगी मुझे हमेशा से भाती थी और आज भी भाती है, मुझे तसन्नो और बनावट से शदीद नफरत है। लोगों का कहना है कि साहब वो इस कदर आपको पसंद करते हैं, लोग आपकी आवाज़ पसंद करते हैं, आप उनसे मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बरसों से उन्हें जानते हैं। मियाँ उसकी वजह यह है, उन्हीं की वजह से अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया है, इज्जत दी है, एहतराम दिया है, उन्हीं से हम गर्दन अकड़ा कर बात करें। आपने नहीं सुना वो शेर के, जो अहले जर्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगु होकर भरा करती है पैमाना। जो अहले जर्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सरनगु होकर भरा करती है पैमाना। भरी हुई सुराही होती है, झुक जाती है एक पैमाने को भरने के लिए। तो ये अल्लाह ताला आपको भी किसी मकाम पे, मंजिल पे पहुंचाए, तो हमेशा याद रखिएगा इज्जो इनकिसार का, साथ ना छोड़िएगा। जो लोग आपको इज्जत देते हैं वो आपके लिए बहुत काबिले एहतराम हैं। बेइंतहा शुक्रिया भगत सिंह, आपने ये गीत सुना के हमारे बचपन की यादें ताजा कर दी। तो अब हम चल रहे हैं हमारी ब्रेडफोर्ड 3 से बावर्ची खाने की रानी बिटिया सुमैरा का तोहफा, उनके प्यारी प्यारी कजन्स के नाम जो हमें इस वक्त सुन रही हैं मुझे इस बरा में। हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं, आपका तोहफा लेकर हम वहां जा रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए और आइंदा भी तशरीफ लाकर हमारे प्रोग्राम की और हमारी इज्जत और तौकीर बढ़ाइए। सुमैरा बिटिया जीती रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सेहत से रखे, अपने इज्जामान में रखे, और तुम्हारी ये मोहब्बत, चाहत और प्यार का रिश्ता तुम्हारी कजन से, अल्लाह इसे नजरबद से बचाए।

दोस्तों, हम खुशामदीद कहना चाहेंगे अपने दो मेहमानों को जो अभी अभी हमारी बज़्म की रौनक बढ़ाने के लिए तशरीफ लाए हैं। शकील भाई हमारे बंडे से हमारी बज़्म में शामिल हो चुके हैं और मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआओं का तोहफा भेजा है और एक खूबसूरत कलाम सुनना चाहते हैं। शकील भाई, ये जरा थोड़ा सा तवील है तो इसे मैं अपने सेगमेंट एक गीत एक शायर एक गीत दो फनकार के बाद आपकी नजर करूंगा, ताकि ये कलाम आप तक पहुंच सके। और तशरीफ लाए हैं कराची पाकिस्तान से रिजवान रिजवी, उनके हमरा अमरीन जोहरा उनकी शरीक हयात मौजूद हैं और कहते हैं कि आप तमाम सामीन और नाजरीन की खिदमत में मेरा मोहब्बत भरा सलाम पेश कर दें। बिल्कुल, आपका मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआएं हमने बार भेज दी हैं तमाम सामीन और नाजरीन की खिदमत में। नमाज पढ़ने के लिए आप तशरीफ ले जा रहे हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जब तशरीफ लाएं वापस तो हमें बताइएगा कि आज क्या सुनना चाहते हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिज़्ज़ व अमान में रखे, हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं खाड़ियां गुजरात पाकिस्तान, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम लिसनर परदेसी मजीद साहब, जिन्होंने शकील भाई आपके लिए मोहब्बत भरा सलाम भी भेजा है। आपका तोहफा लेकर हाजिर हैं, आपकी आमद, आपकी मोहब्बत और मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है कि अब आपको मेरी आवाज़ साफ और वाज़े पहुंच रही है पाकिस्तान में और आपका तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिए। जीते रहिए।

दोस्तों, अभी शाह साहब की खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिली। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, नज़र बद से बचाए। शाह जी चीन दे रहो। और अब हम चल रहे हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब। उसके बाद आपका पसंदीदा सेगमेंट एक शायर एक गीत एक दो फनकार लेकर आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। चलें बढ़ते हैं कमर्शियल की जानिब।

0: हेलो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
1: जे मैं फुल हुंदा तेरे जुड़े
0: सही है।

ओके। हाँ, दुनिया बहुत परेशान है।

0: और दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अपने पसंदीदा सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार। आज के शायर थे हजी कादरी, फिल्म का नाम था दो दोस्त, 1975 की ये फिल्म थी और मौसीकी से इसे संवारा था नजीर अली ने और आवाजों का जादू जगा रहे थे गुलाम अब्बास और नाहिद अख्तर। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, आपको ये कैसा लगा। दोस्तों अभी अभी आप सबको मैंने मुत्तला किया था कि हमारे मोहम्मद तरीन बुजुर्ग लिसनर अलहाज शबी अहमद नकवी साहब अमरोहा की हसीन खूबसूरत शहर से हमारे हमराह मौजूद हैं। हमने दिल की गहराइयों से गजल उसने छेड़ी में खुशामदीद कहते हैं और उनका मोहब्बत भरा सलाम प्यार और दुआओं का तोहफा हम आप तमाम सामीन की नजरों में नजर कर रहे हैं। उन्होंने उनकी आमद हमेशा दूसरों की फलाह या खैर की खबर या कोई और खबर हो जब वो बाकायदगी के साथ, वरना आप इस कदर बुजुर्ग हो गए हैं कि प्रोग्राम मेरा सुनते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम सुनते हैं, बच्चे लगाकर दे देते हैं और पूरा प्रोग्राम सुनते हैं, लेकिन अब उनकी निगाह उनका साथ नहीं देती, उनकी उंगलियां उनका साथ नहीं देती और वो शदीद दुख और गम और खला जो अशमल मियाँ की इस जहान पानी से कूच करने के बाद पैदा हुआ, कहते हैं कि मैंने बहुत बड़े बड़े कठिन वक्त देखे हैं लेकिन ये मुझसे सहारा नहीं जा रहा है, सब्र है कि आने का नाम नहीं लेता, हर वक्त अशमल की बात आवाज उनका चलना फिरना मेरे चाहत जानिब मौजूद रहता है। इसलिए कि अशमल शहीद हैं सो वो यकीनन आपको महसूस होते होंगे। रही बात अशमल की वालदा गिरामी मोहतरमा अर्शी बी की, उन्हें आजकल वो अभी तक सदमे से उभर नहीं पाए हैं, ना ही अशमल के वालिद गिरामी खुसरो मियाँ। वो कहते हैं कि मेरी दुनिया लुट गई, मैं सबसे बड़ा मेरा कीमती खजाना लुट गया, मैं क्या करूं। सब्र कीजिए, सब्र का बड़ा फल है। माँ की हालत तो बे इंतहा खराब है, कह लीजिए कि ऐसा लगता है कोई नीम पागल शख्स मौजूद है, सदमे ने उन्हें बेहाल कर दिया है और सोने पे सुहागा ये कि आजकल वो टाइफाइड में मुब्तला हैं। मैं अपने तमाम सामीन और नाजरीन से हाथ जोड़ के मुल्तमिस हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ फरमाइए अल्लाह ताला इन सबको सब्रे जमील अता फरमाए, सब्रे अयूबी अता फरमाए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अशमल की वालदा गिरामी मोहतरमा अर्शी बी साहिबा को सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए। दोस्तों ये इतना बड़ा नुकसान है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं है, ना इस खला को कभी पूरा किया जा सकेगा ना इसकी तलाफी हो सकती है। अब तो जब तक हम जिंदा हैं, सांस में सांस हैं, इस गम को अपने दिल के साथ लगाकर रखना होगा। अल्लाह ताला हमारे मोहम्मद तरीन बुजुर्ग लिसनर अलहाज शबी अहमद साहब की तो तबीयत वैसे ही बुजुर्गी की वजह से नासाज रहा करती थी, अब आंखों ने भी तकरीबन साथ छोड़ दिया है, हवास का बुरा हाल है, कहते हैं कि अब मैं पैगाम भी नहीं लिख पाता और मैं लिखवाता हूं बच्चों से किसी से। आप सबके लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तरह उसने मुझे सब्र अता फरमाया है आप सबको भी सब्र जमील अता फरमाए और हमारी प्यारी सी बिटिया अशमल की वालदा गिरामी अर्शी बी को सेहत कामला और सेहत आजरा नसीब फरमाए। देखिए आपको अपनी सेहत सही करना पड़ेगी, इस गम को सहारने की कुव्वत पैदा करना पड़ेगी, इसलिए कि अभी आपके सामने हंसती मुस्कुराती बातें बनाती अशमल मियाँ की बहना ज़ैना मौजूद हैं, इसकी तरबियत करनी है। आपको पता है कि इसमें आपको अशमल मियाँ की झलक बहुत नज़र आती होगी और आप हैरान होंगे कि 7-8 साल की बच्ची जिसके बोलने बातें करने हंसने की आवाज़ से घर गूंजता था अब बिल्कुल खामोश हो गई है भाई के जाने के बाद। हर एक से यही सवाल करती है कि भैया कब आएंगे, अच्छू भाई कब वापस आएंगे। अभी तक उसने ये रियलाइज नहीं किया कि उसके भैया इस जहान फानी से दूसरी जगह कूच कर गए हैं, ऐसी जगह जहां अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों को बुलाता है और फिर वो कभी वापस नहीं आते। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, अहले खाना को सबको सब्र जमील अता फरमाए। चचा का बुरा हाल है बाबर का, अनस का, चची का बुरा हाल है उनकी निगहत का, तो बात ही नहीं कर पा रही थी मुझे, मैंने फ़ोन किया था तादियत के लिए, जब कह रही थी हमारा सब कुछ लूट गया। आप फिर इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस कदर मोहब्बत करते थे इस बच्चे से सब, इसीलिए शायद अल्लाह ताला को भी पसंद आया और उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया। साथ ही साथ उन्होंने एक और ख़बर भी सुनाई कि मेरे चचाजाद भाई हैं तनवीर अब्बासी जो कराची में मुकीम है, उनका गले का ऑपरेशन हुआ है। मैं भी जाहिर अब रात को जाके फ़ोन कर सकता हूँ और दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला अपने करम से अपने फजल से उन्हें सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए। तनवीर अब्बासी हमारी ढेरों दुआएं तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा अपने दुआमान में रखे, सेहत से रखे और इंशाल्लाह जल्द बात होगी तो तफसील से मैं पता करूंगा कि किस किस्म का ऑपरेशन है। शबी भाई आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आपने मुझे मुत्तला किया और हमने अपने तमाम सामीन और नाज़रीन से ये, आपको पता है कि मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले लाखों हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जैसे ही मैं कभी कोई ऐसी बात करता हूँ उनके हाथ उठ जाते हैं कि आज फिर किसी के लिए ये दुआ करा रहे हैं, तो दुआ फरमाइए अल्लाह ताला अर्शी बी को और तनवीर अब्बासी साहब को अपने करम से अपने फजल से सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए।
1: नेशन रेडियो ऑन 1413 AM DAB Plus मोबाइल ऐप एंड ऑनलाइन एट bradfordasianradio.co.uk दिस is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
8: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
7: जो कि पायदार मजबूत खूबसूरत डबल एंटरप्रेस ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
8: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
7: फर्स्ट चॉइस
8: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
7: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
8: 01274317644।
9: क्वालिटी वैल्यू स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
8: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
8: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, PD9 5BR, 01274491442,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future. Future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर? रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
3: दोस्तों, आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर, यॉर्कशायर की ससीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो खुश आमदीद कहता है उन अहबाब को जो हमारे हमराह मौजूद हैं ऑनलाइन। 01274306677 पर। इससे पहले कि हम आपको बंडले लेके चलें और हमारे मोहतरम लिसनर और कॉलर शकील साहब का तोहफा उनकी नजर करें, क्यों ना हम आपकी मुलाकात एक बहुत खूबसूरत सी, सादा, मासूम और दिलकश शख्सियत से करा दें जिन्हें आप सब जानते हैं, मोहम्मद अयूब चौहान साहब के नाम से। तो आइए अयूब चौहान साहब के पास चलते हैं बनले। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम भाई, आप ठीक हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आप?
5: मैं भी ठीक ठाक हूँ।
3: आप कैसे हैं?
5: तो आप बबले चाहते हैं तो आप सुना देंगे? तो मैं कुछ इशार सुना देता हूँ आपको।
3: जरूर जरूर सर, आंखों पर।
5: कभी कभार ना किसी से तेरे फसाने को, मैं जाने कैसी खबर हो गई जमाने को, आप सुना देंगे? तो मैं कुछ इशार सुना देता हूँ आपको।
3: जरूर जरूर सर, आंखों पर।
5: कभी कभार ना किसी से तेरे फसाने

0: आई है दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह न रही मेरे आशियाने को। आहा
1: मेरे लहर के बतंगों का फूल होता है।
0: आहा
1: हुजूर शमा ना लाया करे जलाने को।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: सुना हुआ शहर की लहर में तुम ना जाओगे, कहो तो आप सुझाव खाने को।
0: सुना है गैर की महफिल में तुम न जाओगे, कहो तो आज सजा लूं गरीब खाने को। वाह वाह वाह वाह।
1: दरगाह के कबर कबर में सब चल जिसे दुआ न सुनाए।
0: आहा
1: से देर में क्या हो गया जमाने को।
0: दबा के कबर में सब चल दिए दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। भाई बहुत खूबसूरत इंतखाब। वाह वाह वाह वाह।
1: कमर जरा भी नहीं तुमको खौफ रसवाई।
0: आहा
1: चले हो चौधरी सब ने उन्हें बुलाने को।
0: कमर जरा भी नहीं तुमको खौफ रसवाई, चले हो चांदनी सब में उन्हें मनाने को। भाई वाह वाह वाह वाह।
1: बुलाने को मनाने को बहाने को।
0: हाँ जमाने को
1: जी। अच्छा ये हो रहा है हमने जो वीर जलाए हैं तेरी गलियों में, अपने कुछ ख्वाब सजाए हैं तेरी गलियों में।
0: हमने कुछ दीप जलाए हैं तेरी गलियों में, हमने कुछ ख्वाब सजाए हैं तेरी गलियों में। वाह वाह वाह।
1: जाने ये इश्क है या कोई पुराना पहचान।
0: आहा
1: चांद लेकर चले आए हैं
0: तेरी गलियों में। भाई वाह वाह वाह वाह।
1: तस्करा है तेरी गलियों का तो डर जाता है।
0: वाह
1: दिल में वो जख्म उठाए हैं
0: तेरी गलियों में। क्या बात है, ये बात तो कमाल इंतखाब है। वाह वाह वाह वाह।
1: तस्करा होता है तेरी गलियों का तो डर जाता है। दिल में वो जख्म उठाए हैं तेरी गलियों में, इसलिए भी तेरी गलियों से हमें नफरत है। हमने अरमान बनाए हैं
0: तेरी गलियों में। वाह वाह। ये शेर दोबारा पढ़ दीजिए। इसलिए भी
1: तेरी गलियों से हमें नफरत है।
0: आहा
1: हमने अरमान गवाए हैं
0: तेरी गलियों। बहुत खूबसूरत इंतखाब।
1: हर एक चीज अधूरी सी हमें लगती है।
0: आहा
1: जाने क्या छोड़ के आए हैं तेरी
0: गलियों में। भाई वाह वाह वाह वाह।
1: तो बस इतनी सी शायरी तो जी ठीक है जी। इंशाल्लाह साहब सब आपकी महफिल को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम।
0: आपका मोहब्बत भरा सलाम तमाम अहबाब तक पहुँचा। इंशाल्लाह। और हमने आपका गीत नोट कर लिया है अयूब, और जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। जीते रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और दोस्तों हस्ब वादा अब हम आपको बनने लिए चल रहे हैं, जहाँ मौजूद हैं हमारे मोहतरम शकील साहब, और उन्होंने जो कलाम सुनना चाहा है जिस शख्स की आवाज में है, आज उस शख्स की सालगिरह मनाई जा रही है। नाम है उनका अताउल्ला ईसा खेलवी। अताउल्ला ईसा खेलवी साहब से हमारी मुलाकातें रही, और बतौर खास वो ईद मेला में एक मरतबा तशरीफ लाए थे, और मुझे ये एज़ाज़ हासिल हुआ कि उसकी निज़ामत प्रोग्राम की पूरे मैं कर रहा था। वहाँ मेरी बड़ी तफसीली इनसे मुलाकातें तो बहुत रही, लेकिन वहाँ बहुत तफसीली मुलाकात हुई। और जनाब अताउल्ला ईसा खेलवी उन वाहिद फनकारों में हैं, वाहिद नहीं है, दो हैं ऐसे लोग कि जिन्होंने न टेलीविजन का सहारा लिया, न रेडियो का सहारा लिया, न फिल्मों का। ये तीन बड़े सहारे हैं बड़ा फनकार बनने के लिए। लेकिन जनाब अताउल्ला ईसा खेलवी साहब और मोहतरमा मुन्नी बेगम, ये दो वो फनकार हैं पाकिस्तान के कि जिन्होंने लाखों दिलों की धड़कनों में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी अपनी खूबसूरत आवाज से और अंदाज से, और ये मकबूल हुए कैसेट्स के जरिए। लोग मार्केटों में ढूंढा करते थे कि क्या कोई नई कैसेट आई है अताउल्ला ईसा खेलवी की, कौन सी बस थी, ट्रेन थी, ट्रक था, जहां अताउल्ला ईसा खेलवी की आवाज न बजती हो। हम छोटे थे और कराची से हैदराबाद का हम सफर किया करते थे, मेरे मामू मुकीम थे, टंडो मोहम्मद खान।

में तो वहां जाना होता था, तो आप यकीन जानिए सारे रास्ते अताउल्लाह इसहाक एलवी की गजलें बजा करती थी, उर्दू और पंजाबी। अब फिर वक्त अहवाल यह है कि अताउल्लाह इसहाक एलवी साहब शदीद बीमार हैं, बुजुर्ग हो गए हैं और व्हीलचेयर पर हैं, लेकिन आवाज आज भी उनकी वही सहर अंगेज और ऐसा लगता है लाखों दिल टूटे दिलों की आवाज ने बसेरा कर दिया है अताउल्लाह इसहाक एलवी की आवाज ने। दुआ फरमाइए कि हमारे मुल्क का ये नामवर फनकार, जिसने उस सीढ़ी पर कदम नहीं रखा जिस पर चढ़ के लोग फनकार बनते हैं, बल्कि उस सीढ़ी से आज हम तक पहुंचा है और दुनिया के चार कोनों में जाना माना जाता है, जिसे लोग कहते थे गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस जमाने में रिकॉर्ड्स और उस जमाने में डिस्क आ गई थी उनका, तो उन्हें कैसेट बहुत सस्ता मिल जाता था। और सस्ता क्या मैं आपको बताऊं, 7 से लेकर 10 पाउंड में अपने पसंदीदा फनकार की आवाज में वो कैसेट ले लिया करते थे। आज उनकी सालगिरह है, हमारी दुआएं, शकील साहब का ये खराज अकीदत है अताउल्लाह इसहाक एलवी को, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, नजर बद से बचाए। सालगिरह की हमारी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से और हमारे लाखों सुनने वालों की जानिब से लाला, आपको बहुत लाला कहते हैं इन्हें प्यार से, बहुत बहुत बधाई हो। और ऐसी बहुत सी सालगिरह आप देखें, आप एक मिसाली फनकार हैं, शायद ऐसे फनकार फिर हमें मैसर ना आए जो इस तरह से लाखों दिलों में घर कर लेते हैं।

0: दोस्तों अभी अभी हमारे दो नए मेहमान बज में शामिल हुए हैं, शहरयार साहब, आप नॉर्थ हार्ट लंदन से हमारे हमरा मौजूद हैं, और मोहब्बत भरा सलाम अपनी और अपने अहले खाना की जानिब से आपकी नज़र कर रहे हैं। तशरीफ लाए हैं हमारे बहुत ही खूबसूरत लिसनर डनकास्टर सिटी से सिराज मुनीर साहब, और उन दोनों अहबाब ने मेरे कंधे पर बंदूक रख के चलाई है। कहते हैं कि अपनी पसंद का शहजाद साहब कह रहे हैं अपनी पसंद की गज़ल, और हमारे सिराज मुनीर साहब कह रहे हैं अपनी पसंद का गीत। तो हम दोनों की ख्वाहिश का एहतराम करेंगे और ज़रूर कमर्शियल के वक्फे के बाद आपका तोहफा आपके नाम करेंगे। और मैं गज़ल ढूंढता हूँ, एक गज़ल बहुत दिनों से मैंने नहीं सुनी, उसे हम आपके नाम कर देंगे। शहरयार भाई, अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, नज़र बद से बचाए, और हमारी ढेर दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। रिजवान रिजवी साहब माशाल्लाह तशरीफ ला चुके हैं, नमाज से फारिग हो गए हैं, हम उन्हें एक मरतबा फिर उनकी शरीक हयात अम्बरीन जहरा के हमरा गज़ल उसने छेड़ी में खुश आमदीद कहते हैं, बढ़ते हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब। आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में, और दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन सुना जा रहा है। हमारे वह अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी बज़्म में शामिल होना चाहें, तो हमारे स्टूडियो का नंबर है 1274-30-6677।
1: 1413 AM, DAB+, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885-428-349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
10: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
9: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
10: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414-26007 8।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
4: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444. Or donate online at ikca.org.uk.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: और दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपको नॉर्थ हॉल टंडन लेके चलें, शहरयार साहब का तोहफा गजल की सूरत में जो हमने मुंतखब की है उनकी नज़र करें, क्यों ना आपकी मुलाकात हम बर्ले से आए हुए हमारे खूबसूरत मेहमान शकील भाई से करा दी जाए। ठीक है, पहले उनसे मिलते हैं और फिर नॉर्थ हॉल टंडन चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वाला इबादिल्लाह सालिहीन। शकील भाई कैसे हैं?
1: अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, सब ठीक है, आप सुनाएं कैसे हैं?
0: अल्लाह का बड़ा करम है, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है।
1: तो तुम सुनने वाला को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मैं खालिद सलीम साहब है, अयूब भाई है, नवीद भाई है, सूफी अब्दुल करीम साहब, रिजवान रिजवी उनकी अलिया है, चौधरी रुखसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब है, तारिक जुल्फी साहब, हाशमी आसवाल है, हमाइया परवेज हैं, तसीफ अहमद है, अजीत भाई, वसीम शाह, लाशफिया नकवी साहब, शाह साहब, सबको मेरे से अस्सलाम वालेकुम।
0: आपका मोहब्बत भरा सलाम आपके अहबाब तक पहुंचा।
1: शुक्रिया। तो एक छोटी सी गजल है, कमर रईस लिखने वाले हैं।
0: हाँ, बहुत खूबसूरत शायर है, अता कीजिए।
1: शुक्रिया। हालात अब संवरने के आसार भी नहीं। हालात अब संवरने के आसार भी नहीं, गम बेशुमार है, कोई गमखार भी नहीं।
0: क्या बात है, क्या मतलब है साहब, अता कीजिए, अता कीजिए।
1: हालात अब संवरने के आसार भी नहीं, गम बेशुमार है, कोई गमखार भी नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: क्या क्या लिखूं मैं शहर सितम की रिवायतें, एक दूसरे का कोई मददगार भी नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कश्ती का मेरी यारों निगहबां है कोई और।
0: कश्ती का मेरे यारों निगहबां है कोई और।
1: हाथों में मेरे इसलिए पतवार भी नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। ए शेख तेरी बात अजीबो गरीब है। भीगे हैं होंठ और गुनाहगार भी नहीं।
0: क्या बात है, क्या बात है शेख साहब की, क्या बात है, आता कीजिए।
1: ऐ शेख तेरी बात अजीबो गरीब है। भीगे हैं होंठ और गुनाहगार भी नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: किसके कदम चूमूं, किसे पारसा कहूं, हर शख्स अब तो साहिब किरदार भी नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। मैं कैसे मान लूं जो मसीह आए वक्त है। मैं कैसे मान लूं वो मसीह आए वक्त है, किरदार उसका लायक दस्तार भी नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। करते हैं,
0: अता कीजिए।
1: उसके लिए दुआएं न मांगी कहाँ कहाँ।
0: उसके लिए दुआएं न मांगी कहाँ कहाँ,
1: लेकिन कमर वो मेरा तलबगार भी नहीं।
0: आए है, लेकिन कमर वो मेरा तलबगार। मख्ता अता कर दीजिए साहब, बहुत जानदार मख्ता है।
1: उसके लिए दुआएं न मांगी
0: कहाँ कहाँ,
1: लेकिन कमर वो मेरा तलबगार भी नहीं।
0: भाई वाह वाह, बहुत खूबसूरत इंतखाब शकील भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे।
1: शुक्रिया। तो एक कमर उस्मानी उनकी गजल छोटी सी।
0: जरूर जरूर, अता कीजिए।
1: मेरी तलब का ये हासिल ये मुद्दा ठहरा। मेरी तलब का ये हासिल ये मुद्दा ठहरा, तेरे कर्म का सहारा ही आसरा ठहरा।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। कोई हवाए जमाना उसे मिटा न सके, तुम्हारी याद का हर नक्श देर पैठेरा।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। मताए कोनो मका है अजीज तर मुझको।
0: मताए कोनो मका है अजीज तर मुझको,
1: जो इल्तिफात मेरे दर्द की दवा ठहरा।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। किसी के नक तो नजर का तो कुछ नहीं लेकिन। किसी के नक दो नजर का तो कुछ नहीं लेकिन, तेरी निगाह में क्या जाने जानिए मैं क्या ठहरा।
0: तेरी निगाह में न जानिए मैं क्या ठहरा। वाह वाह वाह वाह वा।
1: किसी के नक दो नजर का तो कुछ नहीं लेकिन,
0: कुछ नहीं लेकिन,
1: तेरी निगाह में क्या जानिए मैं क्या ठहरा।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: अब इसके बाद जो होना है सोच लो खुद ही।
0: अब इसके बाद जो होना है सोच लो खुद ही।
1: मिला हुआ है जो तूफान से ना खुदा ठहरा।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: तुम्हारी याद से बचकर गुजर गया जो कभी।
0: तुम्हारी याद से बचकर गुजर गया जो कभी।
1: वो एक लम्हा भी सदियों का फासला ठहरा।
0: वाह वाह वाह वाह। वो एक लम्हा भी अता कीजिए अता कीजिए।
1: तुम्हारी याद से बचकर गुजर गया जो कभी।
0: आहा।
1: वो एक लम्हा भी सदियों का फासला ठहरा।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: शौरे रवि मैंने जिसको बख्शा था।
0: आहा।
1: खुशा नसीब वही मेरा रानुमा ठहरा।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। अकीर जर्रा जरा वक्त जिसके साथ हुआ।
0: आहा।
1: अकीर जर्रा जरा वक्त जिसके साथ हुआ चमक उठा तो वही वक्त का खुदा ठहरा।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। तेरे ही नाम की निस्बत मेरा तारुफ है।
0: तेरे ही नाम की निस्बत मेरा तारुफ है।
1: मैं कुछ ही क्यों ना रहा तेरा नक्शे पा ठहरा।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। तो आखिरी शेर कहते हैं।
0: अता कीजिए।
1: उम्मीद भीम का वो मार का भी क्या था कमर।
0: उम्मीद भीम का वो मार का भी क्या था कमर।
1: बस एक नजर मेरी किस्मत का फैसला ठहरा।
0: भाई वाह वाह वाह वाह। मख्ता अता कर दीजिए। वाह वाह कमर रईस साहब क्या बात है।
1: उम्मीद भीम का वो मार का भी क्या था कमर।
0: आहा।
1: बस एक नजर मेरी किस्मत का फैसला ठहरा।
0: वाह वाह वाह क्या बात है क्या बात है। बहुत खूबसूरत क्या इंतखाब है साहब। लाजवाब। अल्लाह आपको खुश रखे सेहत से रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और आपके कलाम को परदेसी मजीद साहब ने वाह वाह लिख के भर दिया है मेरा पूरा पेज। और रिजवान रिजवी और अमरीन जहरा ने कराची पाकिस्तान से बहुत सराहा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हमारे मोहतरम लिसनर और कॉलर शकील साहब को जो बंदे से हमारे हमराह मौजूद थे। अब हस्ब वादा हम आपको नॉर्थ हॉल्ट लंदन लिए चल रहे हैं जहां जनाब शहरयार साहब अपने अहले खाना के हमराह मौजूद हैं और गजल सुनने के मुतमन्नी हैं। पसंद मेरी है आपकी मोहब्बतों चाहतों के नाम मेरे छोटे भाइयों की तरह है। इनको आप सब खलील हैदर के नाम से जानते हैं। बहुत नफीस शख्सियत है। कलाम सलीम कौसर का है। आपकी नजर कर रहा हूं कबूल कीजिए। और इसके बाद रियासत साहब हम आपका तोहफा आपकी नजर करेंगे। ठीक है।

0: mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लैंड, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: सेफवे राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
1: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 days बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
5: ओपन 7 days 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रेडफोर्ड 9627229627222
4: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
7: और आइए दोस्तों, अब ये चल रहे हैं. गर्मी हो गई भाई, सूर्य हो तो मुझे पंखा लगाना पड़ा. इसलिए पहले तो एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन अब एहसास हो रहा है इस बात का. धूप जब निकली है तो थोड़ी सी गर्मी हो गई है. अब M62 पर चल रहे हैं. AD 14 साहब का तोहफा उनकी नज़र करने जा रहे हैं. इसके बाद हम आपको कराची पाकिस्तान नॉर्थ नाजमाबाद लिए चलेंगे, जहां से हमारी हसीन जोड़ी जनाब रिजवान साहब और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा काजमी हमारी बज़्म की रौनक बढ़ा रहे हैं. उनका तोहफा उनकी नज़र करेंगे. लेकिन हाँ, अभी तो हम चलते हैं M62 पर. कई दिनों की गैर हाजिरी के बाद डीजी चौधरी साहब हमारी बज़्म में आए हैं. और हाँ, चौधरी साहब पे मुझे याद आया, हमारे बड़े खूबसूरत लिसनर हैं चौधरी रुखसार अहमद साहब, जो अभी तो हम चलते हैं M62 पर. कई दिनों की गैर हाजिरी के बाद डीजी चौधरी साहब हमारी बज़्म में आए हैं. और हाँ, चौधरी साहब पे मुझे याद आया, हमारे बड़े खूबसूरत

जाती है। चलिए ठीक है, अल्लाह करे कि आप खैर आफियत से हों। कमी महसूस हो रही है आपकी भाई चौधरी रुखसार अहमद साहब। चलते हैं M62 मोटरवे पर और पेश करते हैं AD चौधरी साहब आपका तोहफा। हैव अ नाइस एंड सेफ जर्नी। नजीर अहमद साहब लैया पंजाब पाकिस्तान से आगाज प्रोग्राम से ही हमारे हमराह मौजूद हैं, उनका तोहफा भी हमें उनकी नज़र करना है। चलते हैं M62 पर।

दोस्तों, ये गजल सुनने के बाद मुझे अपना यार शौकत अली बहुत याद आया। वो इंतहा मोहब्बत करने वाली शख्सियत और यारों का यार। इनके बच्चे भी बे इंतहा सआदतमंद हैं। एक बच्चा जब यहाँ लंदन आ रहा था तो उसको उन्होंने अपने तमाम दोस्तों के नाम लिख के दिए थे कि कहीं भी रहते हों आपको उस शहर में फलाने साहब से मिल के आना है। मुझे नाम याद नहीं रहा कौन सा बेटा था, माशाल्लाह अल्लाह ने बेटों से नवाजा है। बड़ा नफीस शख्स। और मेरी खुशनसीबी ये कि ये गज़ल जो मैंने अभी आपकी खिदमत में पेश की है ओरिएंटल स्टार के फ्लैट पर है, और ओरिएंटल स्टार एजेंसी बर्मिंघम में एक बहुत बड़ी रिलीजिंग एजेंसी थी जिसके रूहे रवां हैं अय्यूब भाई। उनकी मोहब्बत मेरे बड़े भाइयों की तरह है, और चाहत और प्यार का आलम यह था कि जितनी नई रिलीज होती थी हर महीने मेरे पास 26, 25, 30, 15, 20 सीडीज मुझ तक पहुंच जाती थी। उन्हें पता था कि ये इस काम में हैं, और उनके सीडीज के आने का मुझ तक ये फ़ायदा होता था कि लोगों तक अभी पहुंचते नहीं थी और मुझ तक पहुंच जाती थी। अल्लाह ताला अय्यूब भाई को उम्र खिज़र अता फरमाए। अब रिटायर्ड हो गए हैं, ऑनलाइन अब भी ओरिएंटल स्टार एजेंसी काम कर रही है, लेकिन आप जानते हैं कि वक्त वक्त की बात है। अब सीडीज का दौर ख़त्म हो चुका है और कोई दुकान आपको सीडी की नज़र नहीं आएगी। जैसे कैसेटों का एक वक्त था, कैसेटों का दौर ख़त्म हुआ, फिर सीडीज का वक्त आया, सीडीज का वक्त ख़त्म हुआ, रिकॉर्ड्स का एक ज़माना था, ढूंढ ढूंढ के रिकॉर्ड्स खरीद खरीद के लाते थे। मुझे बेशुमार पुराने गीतों के रिकॉर्ड अय्यूब भाई ने ही दिए क्योंकि ये इस बिजनेस में थे और रिकॉर्ड्स का कलेक्शन उनका बहुत आला है। बहरहाल अल्लाह ताला ओरिएंटल स्टार एजेंसीज के अय्यूब भाई को उम्र खिज़र अता फरमाए। बहुत दिनों से उनसे बात नहीं हुई है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आज उनसे सलाम दुआ हो जाए। मेरे सगे भाइयों की तरह हैं और उनकी कोशिशों से, क्योंकि मुझे इस दश की सयाही में यहाँ ब्रेडफोर्ड में तो यानी इंग्लैंड में तो तकरीबन 40-45 बरस हो गए रेडियो प्रोग्राम करते हुए, तो हमारे इस प्रोग्राम में गीतों को बर वक्त लोगों तक पहुँचाना और इससे पहले कि वो मार्केट में पहुँचे मुझ तक पहुँच जाते थे, और ये सब करम था, मोहब्बत थी, चाहत थी अय्यूब भाई की। अल्लाह ताला ने नजर बद से बचाए और उम्र खिज़र अता फरमाए। अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। रिजवान रिजवी साहब, आप आगाज प्रोग्राम से मेरे हमराह मौजूद हैं ना, लेकिन अब आपने अपना गीत लिखा है, मैं वादा नहीं करता, कोशिश जरूर करूँगा, इसलिए चलें क्या याद करेंगे, इसलिए कि अगला गीत तो मैंने रखा ही इस जोड़ी के लिए था। अब मैं गीत बदल देता हूँ, अब मैं गीत बदल देता हूँ। मुझे याद नहीं था कि आपके लिए तोहफा रखा। चलिए, मैंने आपसे बताया था कि अगला तोहफा जो है वो हमारे मोहतरम जोड़ी रिजवान रिजवी साहब और उनकी शरीका हयात अमरीन जहरा काजमी का, जो कराची नाथ नाजुआत से हमारे हमराह मौजूद हैं, उनका तोहफा उनकी नज़र कर देते हैं। गीत जो मैंने मुंतखब किया था उसे मैंने अलकत कर दिया है और आपकी पसंद का गीत आपके नाम कर रहा हूँ, कबूल कीजिए।

0: Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306 77.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

तुम्हारा नाम मेरी धड़कनों में शामिल है, तुम्हारा नाम मेरी सांसों में बसा है, तुम्हारा नाम मेरे तन बदन में जिंदगी बन के रहता है। सुन सको तो सुनो कि इन फिजाओं के होंठों पर भी तुम्हारा ही नाम है। आ सको तो आ जाओ कि मेरे साथ ये फिजाएं भी सदियों से तुम्हारे इंतजार में हैं।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रिवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं जो ब्राडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274 48 77।
1: मीडियम वेव 1413 पर आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे, ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
3: मैनिंगम सुपर स्टोर,
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306 77.

तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। कुमार, ना तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, ना ईमान, ना वफादारी,

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.
12: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

बेसबब बोलते रहना नहीं आदत मेरी, बेसबब बोलते रहना नहीं आदत मेरी, तुझसे मिलता हूं तो जाने मुझे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ यही नशात आप डेप प्लस पे भी सुनते हैं। जी हम डेप प्लस पे आप हमें ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में डिजिटल साउंड में सुन सकते हैं, और यही नशात अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। और हमारी इस समय की ये नशात आप शेफील्ड में लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM के जरिए भी सुन रहे हैं। और साथियों अब प्रोग्राम रंगे महफिल लिए आपके मेजबान सैयद हसन नाज़रे और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलुस पर आदाब पेश करते हैं तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप मोहतरम और मोजज़ सुनने वाले इस वक्त जहां कहीं भी हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे आप सभी खैरियत से होंगे। हमारी बहुत सी नेक दुआएं नेक तमन्नाएं कि आप जहां रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और अगर खुदा न खास्ता आज कुछ तबीयत अच्छी नहीं है तो अल्लाह करे कि आपको सेहत और सलामती नसीब हो। और सभी नगर आज के इस प्रोग्राम में आप शिरकत फरमाना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677, ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है 01274, स्टूडियो का नंबर है 3066773। आइएगा आप सभी से बात करके हमें दिली खुशी होगी।

अजी सामीन, मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता बदलता जा रहा है। कभी थोड़ा गर्मी का एहसास होता है और जो ही हम सोचते हैं कि अब थोड़ी सी गर्मी आ गई है, तो आराम से एक होती है बारिश और उसके बाद बिल्कुल ही मौसम के तेवर बदल जाते हैं। आज भी कुछ से मिला जुला मौसम था। उम्मीद करते हैं कि इस मौसम के साथ आपकी खूब बनती होगी। आइए अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत गीत से। और हाँ सामीन, अगर आप व्हाट्सएप के जरिए भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो कॉल कर सकते हैं 00447 800 599 563। दैट्स 00447 800 599 563। वो ठहरता क्या कि गुजरा तक नहीं जिसके लिए, वो ठहरता क्या कि गुजरा तक नहीं जिसके लिए, घर तो घर हर रास्ता आ रास्ता मैंने किया।

और सामीन अभी आज के इस प्रोग्राम का आप पहला गीत सुन रहे थे, आवाज थी मुजीब आलम की। फिल्म का नाम था शमा और परवाना। और अब आपको एक और खूबसूरत गीत सुनाते हैं, शायरी है जनाबे मसरूर अनवर की, मौसीकी है नाशाद की, फिल्म का नाम ख्वाब और जिंदगी। खूबसूरत अपने वक्त का प्यारा गीत मसूद राणा और माला की आवाज में।

0: Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
2: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
3: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
2: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेस विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
3: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
2: फर्स्ट चॉइस
3: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
3: 01274317644।
4: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
5: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
5: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
3: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
3: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
5: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार,
3: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
3: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
5: आपकी शान,
3: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान।
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
3: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
5: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
3: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
5: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
3: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
5: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रेडफोर्ड, 9627222, 9627222।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
1: आपकी रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

और अजिया सामिन, अभी आप इब्रारुल हक की आवाज में खूबसूरत गीत सुन रहे थे। जी हाँ, इस वीकेंड जो वीकेंड गुजरा इस लास्ट संडे को इब्रारुल हक हमारे ब्रेडफोर्ड में मौजूद थे, मोर पार्क में, और अपने फन से लोगों के दिल मोह रहे थे, बहला रहे थे। क्या ही खूबसूरत गीत गाए उन्होंने और क्या ही लोगों को हंसाया। अभी तक इनकी तबीयत से वो शरारत, वो चुलबुलापन गया नहीं है। हालांकि अब इन्हें भी गायकी करते गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 20-25 साल तो कहीं गए ही नहीं है, लेकिन अभी तक इनकी तबीयत में वही शरारतीपन मौजूद है, गया नहीं है। हालांकि अब इन्हें भी गायकी करते गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 20-25 साल तो कहीं गए

और सामिन, अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, आवाज थी उदित नारायण और साधना सरगम की। और इसी गीत से याद आया कि वो गीत कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, उस गीत के शायर, उस गीत के खालिक तस्लीम फाजली की आज, बल्कि गुज़िश्ता कल उनकी बरसी थी 17 या 18 अगस्त को। जी, उर्दू शायरी, फिल्मी शायरी जो है पाकिस्तान की स्पेशली, उसकी बात अगर करें तो ये बिल्कुल इब्तदाई शोरा में से एक थे और इन्होंने बहुत ही कम उम्र पाई। गालबन टोटल इनकी जो ज़िंदगी थी वो गालबन या 32 साल थी या 35 साल, लेकिन क्या ही गीत इन्होंने लिखे। रफ्ता रफ्ता ये भी उन्हीं का गीत है। किसी मेहरबान ने आके मेरी ज़िंदगी सजा दी, ये भी उन्हीं का गीत है। और फिल्म शबाना के गीत उन्हीं के लिखे हुए हैं। बेशुमार ऐसे गीत हैं कि जब आप शायर तक पहुंचते हैं तो आगे नाम एक ही होता है, तस्लीम फाजली। कहते हैं कि महफिल में बैठते थे और अगर उस फिल्म के लिए दो शायर होते थे तो ये दूसरे शायर से कहते थे कि जो जो इजी सिचुएशंस हैं उनके लिए गीत आप लिखो, जो मुश्किल है उनके लिए गीत मैं लिखूंगा। इसे कहते हैं इंसान का बड़ापन। और कहते हैं कि बस थोड़ा सा तंबाकू नोशी का इन्हें शौक था, सिगरेट पीते थे बहुत ज्यादा। हालांकि हम अक्सर कहते हैं कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है, कभी भी सिगरेट नहीं पीने चाहिए, लेकिन क्योंकि हिस्ट्री की बात है, तारीखी वाकया, तो उस एतबार से लिखा है कि एक सिगरेट पीते हुए गीत के इब्तदाई बोल लिखते थे और दूसरा सिगरेट खत्म होने से पहले पहले ये पूरा गीत लिख लेते थे। और इंडिया में ये खूबी सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र कृष्णा को हासिल थी कि कमोबेश 5 से 7 मिनट में पूरा गीत लिख लेना। तो आइए यूं करते हैं कि तस्लीम फाजली की यादें ताज़ा करते हुए ये खूबसूरत गीत आप सुनने वालों के लिए पेश करते हैं। तस्लीम फाजली के दूसरे भाई निदा फाजली ने इंडिया में बहुत बड़ा नाम कमाया। एक भाई इधर पाकिस्तान की तरफ आ गए और दूसरे इंडिया में, और दूसरे भाई इनके गालबन अभी भी हयात हैं, निदा फाजली। लेकिन तस्लीम फाजली हरकत कल बंद हो जाने की वजह से बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन लाजवाल गीत छोड़ के गए हैं। उन्हीं में से एक गीत इस वक्त हम आप सुनने वालों के नाम करते हैं।

और सामिन, इसी गीत के साथ ही अब हम चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आप सुनने वालों से लाइव कॉल्स में मुलाकात होगी, जरूर तशरीफ लाइएगा। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं, 01274306677 ब्रेडफोर्ड, 01274306677।

0: Bradford Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 3-

0: और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंगे महफिल में खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 एम पर। और अगर अभी अभी आपने हमारी ये नशात सुनना शुरू किए हैं तो आपको बताते चलें कि आप ये नशात न सिर्फ ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से 1430 एम पर सुन रहे हैं, बल्कि यही नशात आप ब्रेडफोर्ड में DAB डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के जरिए भी सुन रहे हैं। और यही नशात अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप अपने स्मार्ट ऐप पे भी सुन सकते हैं। और यही नशात इस वक्त CVFM मिल्सब्रा से 104.5 FM और लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर पेश की जा रही है। और साथियों आप जानते हैं कि ब्रेक के बाद हमारी लाइव कॉल्स होती हैं, तो सबसे पहले अपने आज के इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को खुश आमदेद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: जनाब शकील साहब आप खैरियत से हैं? ठीक है मतलब
1: जी अल्लाह की मेहरबानी, आपकी दुआएं हैं, आप सुनाएं कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है।
1: शुक्र है तमाम सुनने वालों को। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, सुनने वालों की जानिब से आपको भी सलाम पहुंचे।
1: अगर खालिद सलीम मीर साहब सुन रहे हैं, ओली भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब, नवीद भाई, चौधरी मुजफ्फर साहब है, महबूबुल्लाही हैं, हमारे साथी बहन सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, सभी की जानिब से आपको भी सलाम पहुंचे।
1: तो एक गजल है ये ताज निसा ताज
0: जी
1: लिखने वाले।
0: जी जी इनायत कीजिए।
1: जिंदगी की राहतों से मावरा हो जाएगा,
0: जिंदगी की राहतों से मावरा हो जाएगा,
1: एक लिबासे बेखुदी जिसको अता हो जाएगा।
0: बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने,
1: शुक्रिया। अहले दुनिया एक दिन वो वक्त आएगा जरूर,
0: अहले दुनिया एक दिन वो वक्त आएगा जरूर,
1: हर तमन्ना का जहाँ यकदम फना हो जाएगा।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या कहने,
1: शुक्रिया। अहले दुनिया एक दिन वो वक्त आएगा जरूर, हर तमन्ना का जहाँ यकदम फना हो जाएगा।
0: वाह वाह, मुझे इससे शकील का वो शेर याद आ रहा है ना कि है हुसूले आरजू का नाम तरके आरजू, है हुसूले आरजू का नाम तरके आरजू, मैंने दुनिया छोड़ दी तो मिल गई दुनिया मुझे।
1: माशाल्लाह
0: जनाब।
1: एक ताल्लुक है बकाए जात का जामिन यहाँ, एक ताल्लुक है बकाए जात का जामिन यहाँ, फूल टहनी से गिरेगा तो फना हो जाएगा।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: टूट जाएगा ये चरखा जिस्म का चलते चलते,
0: टूट जाएगा जिस्म का ये चरखा चलते चलते,
1: और कैदी कैद से आखिर रिहा हो जाएगा।
0: हा हा हा हा, क्या कहने क्या कहने, फिर से पढ़िए।
1: टूट जाएगा ये चरखा जिस्म का चलते चलते, और कैदी कैद से आखिर रिहा हो जाएगा।
0: बहुत हूँ बहुत हूँ,
1: शुक्रिया। शब का शब की तारीकी से जैसे फूटती है सुबह नो,
0: शब की तारीकी से जैसे फूटती है सुबह नो,
1: दर्द जब हद से बढ़ेगा तो दवा
0: हो जाएगा। बहुत खूब, दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। वाह वाह,
1: गर यही आलम रहा अकदार की तस्खीर का,
0: वाह वाह वाह वाह,
1: गर यही आलम रहा अकदार की तस्खीर का, हर बुरा अच्छा तो हर अच्छा बुरा हो जाएगा।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: शुक्रिया। आखिरी शेर मतिया, ताज क्या गुजरेंगे उससे जो हमारे दिल में है।
0: वाह वाह,
1: ताज क्या गुजरेंगे उससे जो हमारे दिल में है, बस खफा हो जाएगा ना और क्या हो जाएगा।
0: क्या कहने, फिर से पढ़िएगा। अच्छा है, बस खफा हो जाएगा ना और क्या हो जाएगा।
1: ताज क्या गुजरेंगे उससे जो हमारे दिल में है, बस खफा हो जाएगा ना और क्या हो जाएगा।
0: क्या हो जाएगा। बहुत खूब बहुत खूब,
1: शुक्रिया। तो एक गजल मैं लाया हूँ, ये है शम्स बटालवी।
0: जी जी शम्स बटालवी जी जी, इनायत कीजिए।
1: कहते हैं वजूद बर्क जरूरी है गुलिस्तान के लिए,
0: वजूद बर्क जरूरी है गुलिस्तान के लिए,
1: प्याम लाती है तामीरे आशियां के लिए।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
1: अजल से ता बकियामत सुकून नहीं मिलता,
0: वाह वाह,
1: میرے نصیب کی گردش ہے آسمان کے لیے.
0: کیا کہنے؟
1: چکے یہ اور بات ہے پھولوں کا تنگ دامن ہے.
0: آہا.
1: یہ اور بات ہے پھولوں کا تنگ دامن ہے, بہاریں پھرتی ہیں بیتاب گلستان کے لیے.
0: بہت اچھے.
1: چکے نہ پوچھ حال دل زار ہم نشیں مجھ سے.
0: آہا.
1: نہ پوچھ حال دل زار ہم نشیں مجھ سے, کلیجا چاہیے پتھر کا رازداں کے لیے.
0: بہت اچھے بہت اچھے.
1: شکریہ. میرا اور ان کا تعلق ہے اس طرح جیسے
0: آہا.
1: زبان دہن کے لیے ہے, دہن
0: زبان کے لیے.
1: شکریہ. غضب ہوا انہیں تنکوں پہ گر پڑی بجلی.
0: واہ واہ. غضب ہوا انہیں گر پڑی بجلی.
1: گر پڑی بجلی جنہیں سنبھال کے رکھا تھا آشیاں کے.
0: آہا. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. بہت خوب.
1: تیری طلب میں پھر پھراتا ہے مجھ کو دشت بدشت.
0: واہ واہ.
1: تیری طلب میں پھراتا ہے مجھ کو دشت بدشت, وہ ذوق و شوق جو رابر ہے کارواں کے لیے.
0: بہت اچھے بہت اچھے.
1: شکریہ. آخری شعر کہتے ہیں, خدا کے سامنے جانا پڑے گا خالی ہاتھ.
0: خدا کے سامنے جانا پڑے گا خالی ہاتھ.
1: کہ شمس جمع نہ کر پائے کچھ وہاں کے لیے.
0: بہت خوب بہت خوب. کیا کہنے, لاجواب ہے لاجواب ہے.
1: تو شکریہ بہت بہت
0: بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت سا خیال رکھیے گا. آپ کے لیے ہماری جانب سے بہت سی تعلیم. سلامت رہے سلامت رہے. اور جی ہاں سامعین, ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ تھے ہمارے بہت ہی محترم اور معزز کالر جناب شکیل صاحب. شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں, ہمیشہ حسب حال کلام لاتے ہیں سناتے ہیں اور محفل لوٹ لیتے ہیں. آئیے جب تک ہمارے اگلے کالر آتے ہیں آپ کو ایک خوبصورت گیت سناتے ہیں. شاعری ہے ساحر لدھیانوی کی, موسیقی ہے روی کی, آواز محمد رفیع کی, فلم کا نام ہے کاجل.

और सामिन, अभी आप मोहम्मद रफी की आवाज में खूबसूरत गीत सुन रहे थे। अगर आप लाइव आना चाहें तो कॉल मिला सकते हैं, स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677, व्हाट्सएप है 00447 00447 800 599 563।

0: और जी सामीन, अब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हीर मौजूद हैं फ्रांस से। इन्हें आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके?
0: जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है। आप सुनाइए, खैरियत से आप ठीक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम, बहुत करम अल्लाह पाक का, बहुत शुक्रिया आपका।
0: जबरदस्त जबरदस्त।
1: टाइम तो नहीं होगा अभी इतना,
0: तकरीबन पाँच मिनट हैं,
1: तो मैं कुछ सुना दूं।
0: जी जी जी, तकरीबन पाँच मिनट हैं, तो आप सुनाइए शायरी।
1: ओके ठीक हो गया। कहते हैं कि प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है,
0: प्यास दरिया की निगाहों से छुपा रखी है, आहा।
1: एक बादल से बड़ी आस लगा रखी है।
0: बहुत खूब बहुत खूब, क्या कहने।
1: तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं,
0: आहा।
1: तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, इन चराहों ने मेरी नींद
0: उड़ा रखी है। क्या कहने, फिर से पढ़िएगा। वाह वाह वाह वाह।
1: तेरी आंखों की कशिश कैसे तुझे समझाऊं, इन चराहों ने मेरी नींद उड़ा रखी है।
0: और मोहसिन नकवी ने कहा था ना कि ये आंखों के हवाले से खूबसूरत शेर था कि तेरी आंखों की कशिश थी के पलट कर देखा, तेरी आंखों की कशिश थी के पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता।
1: आए हाय, क्या कहने हैं, बहुत हो जी, बहुत हो। आगे कहते हैं कि क्यों ना आ जाए महकने का हुनर लफ्जों को, क्यों ना आ जाए महकने का हुनर लफ्जों को, तेरी चिट्ठी जो किताबों में छुपा रखी है।
0: बहुत हो, बहुत हो।
1: तेरी बातों को छुपाना आता नहीं मुझसे, मेरी बातों को छुपाना नहीं आता मुझसे, तूने खुशबू मेरे लहजे में छुपा रखी है।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: खुद को तन्हा न समझ लेना नए दीवानों,
0: खुद को तन्हा न समझ लेना,
1: नए दीवानों। खाक सहराओं की हमने भी उड़ा रखी है।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: बहुत शुक्रिया
0: जी। जी जी, इन आज
1: टाइम हो तो
0: जी जी जी जी, जी एक गजल और हो जाएगी। जी जी,
1: एक कुछ और हो जाए।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो मिनट दीजिए, पता नहीं मैं पहले सुना चुके हैं। यानी कहते हैं कि कुछ जख्म दिल के ऐसे हैं जो भर नहीं सकते।
0: वाह वाह।
1: कुछ जख्म दिल के ऐसे हैं जो भर नहीं सकते, ये वो हरीफ है जिनसे हम लड़ नहीं सकते।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: बाहर थी बारिश और दिल में थी एक खामोशी।
0: वाह वाह।
1: बाहर थी बारिश और दिल में थी एक खामोशी, हम अपने अश्क कागज पर भी धर नहीं सकते।
0: बहुत अच्छे, वाह वाह वाह वाह।
1: चरागे शब की लो में तेरी याद चलती है, चरागे शब की लो में तेरी याद चलती है, वो लम्हे हैं जो हम चाह कर भी भूल नहीं सकते।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
1: ये खुश्क फूल जो किताबों में छुपाए हैं, ये खुश्क फूल जो किताबों में छुपाए हैं, सच है कि वो माजी को फिर जिंदा कर नहीं सकते।
0: बहुत बहुत।
1: हमने संभाल रखी है दास्तान अपनी, वो दाग है जो चेहरे पर दिखाई नहीं सकते।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप कोई कंपटीशन क्यों नहीं रखते शेर व शायरी का?
0: कंपटीशन जब आप सुनने वाली कॉल करते हैं तो खुद बन नहीं जाता, कुछ आप सुना देते हैं कुछ हम, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपसे डिटेल से बात कर लेता हूं। आप फोन पे ही रहें, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि किस तरह का, अगर आपके जहन में कोई आइडिया, तो हम हमेशा सुनने वालों की जो तजावीज आ रहा होती हैं उन पे बड़ा ध्यान रखते हैं, और जो भी काबिल अमल होती हैं हम उन पे हमेशा अमल करते हैं, क्योंकि इस तरह प्रोग्राम में मजीद निखार आता है, इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, बेहतरी इसी तरह ही आती है। आप लाइन पे ही रहें, मैं आपसे बात करता हूँ।
1: हाँ हम जरूर, आप अपनी टीम से भी बात कीजिए कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, क्योंकि आपकी टीम का ज्यादा रद्दअमल होगा ना।
0: जी जी, चलिए हम सुनने वालों से भी, आपकी वसातत से हम सुनने वालों से भी पूछ लेते हैं कि अगर वो इन प्रोग्राम्स को मजीद बेहतर बनाने के लिए कुछ कंपटीशन या इस तरह का चाह रहे हैं तो वो भी बताएं।
1: थोड़ा सा फन ہو جاتے ہیں نا جی جی کہ تھوڑا سا فن ہو جاتا ہے جی تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے پروگرام میں, ایک ہی رو میں چلتا رہے پروگرام تو وہ بھی تھوڑا بور ہونے لگتا ہے, تو تھوڑی سی چینجز لازمی ہونی چاہیے.
0: پرفیکٹ ہے, ٹھیک ہے, ابھی بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے, میں بریک پہ جاتے ہیں ہم اور پھر آپ سے بات
2: کریں گے. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
8: اوف, اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
9: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا,
8: جو کہ پائیدار, مضبوط, خوبصورت ڈبل انٹرپر گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
9: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
8: فرسٹ چوائس
9: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
8: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
9: 01274317644.
10: فور کوالٹی, ویلیو, اسٹائل اینڈ سیکورٹی, یور نمبر ون چوائس, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
11: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
9: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
11: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
9: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
11: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈ فوڈ, BD8 ATY.
9: ٹیلیفون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
11: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے,
9: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
11: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار,
9: جو دلہن کرے سنگھار,
11: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
9: خالص سونے کی پہچان,
11: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
9: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
11: آپ کی شان
9: ہماری آن,
11: کوالٹی کی پہچان.
9: پاکستان جیولرز, 1 Duffert Lane, بریڈفورڈ, BD9 5VR, 01274 494 442.
11: پاکستان جیولرز.
12: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future. Future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-77.
4: और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को रंगे महफिल में खुशामदीद शुक्रिया अदा करते हैं। शायद आपका शेफील्ड से आपने आज तस्लीम फाजली की बरसी के हवाले से उनका एक खूबसूरत गीत सभी सुनने वालों के नाम करना चाहा है। गीत आज के इस प्रोग्राम में शामिल है, लेकिन साथ साथ दिग्गज सुनने वालों से मुल्तमिस है कि अगर आप लाइव आना चाहें, ऑन दायर आना चाहें, शायरी सुनाना चाहें या हमारे इस प्रोग्राम की बाबत कुछ तजावीज देना चाहें तो भी आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं, 01274-306-77।

दिखाता है कभी, इश्क अपना भी तो तासीर दिखाता है कभी। अक्ल हर बार अतालीक नहीं होती है, और मुझको आता नहीं मंसूर की बातों पे यकीन, मुझको आता नहीं मंसूर की बातों पे यकीन, ऐसी बातों की तो तस्दीक नहीं होती है। और मैंने लफ्जों से तराशे हैं जो पैकर तेरे, मैंने लफ्जों से तराशे हैं जो पैकर तेरे, क्या मेरे शेर से तौसीक नहीं होती है। ये मोहब्बत यूं ही तखलीक नहीं होती है, हर किसी को तो ये तौफीक नहीं होती है।

और सामिन, अब आपको एक और खूबसूरत गीत सुनाते हैं। फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक, आवाज है उदित नारायण और अलका याग्निक की, शायरी है मजरू सुल्तानपुरी की, मौसिकी है आनंद मिलन की।

और सामिन, क्या ही खूबसूरत गीत था अपने वक्त का। उम्मीद करते हैं कि आप सुनने वालों को ये गीत पसंद आया होगा। आइए अब आज के इस प्रोग्राम में किशोर कुमार की आवाज़ शामिल करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ।

और सामिने, देखते ही देखते आज का ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। आप सभी सुनने वालों का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम को सुना, और इसमें कॉल्स की बेहद शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ ही अपने आज के इस प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह अगली महफिल तक इजाज़त दीजिए। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज़।

0: Asian Community Radio, Bradford Asian Radio, on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवीज।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
13: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: सत्रह
1: सत्रह
0: सोलह
2: रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री पर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679।
9: सेफ राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
5: ओपन 7 डेज, 10 to 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स की स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहाँ से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 30
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: नजर उन पर तो अताएं होंगी ही, अच्छों का तो हाल अच्छा होगा, सरकार करम हम पर न किया तो हम जैसों का क्या हो।
1: You're listening to Bedford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
10: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 वेटले लैन, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: सेफवे राइडर.co.uk।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.